सयों रेडियो, हजारों रेडियो कर्मी र करोड़ों नेपाली को माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIM।

एलजीले ल्यायो नयाँ एलजी एसेन्सियल सिरिज, अब किफायती मूल्यमा रेफ्रिजरेटर, वासिङ मसिन, एसी को कम्प्लिट रेन्ज, 10 वर्षको वारेन्टी सहित 0% नो कस्ट इएमआई। नागरिकता भए पुग्छ, हरेक घरको खुसी, घर घरमा एलजी। एलजी, लाइफ्स गुड।

0: बीमा को लाभ दिए आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियो
1: निकट मा दीदी बहिनी विकट मा दीदी बहिनी यो रेडियो दीदी बहिनी 95 थोपलो

0: Media Extreme Energy Drink.
1: बैंक जी खैमत बिली चौधरी एटीएम मोबाइल डे इंटरनेट बैंकिंग गोप्य विवरण आ रही खाई बिले तो माध्यम क्यारे न्यो देप्रे छली जानकारी री विषय न्यो कॉल पर दिमो समय न्यो ठगदिल खामो बैंगर वे कर्मचारी बीरा न्यो देप्रे विवरण री विषय बैंक दे नील पर दिमो न्यो ताने सतर्क तना ठज रिक्या बचेना सिद्धार्थ बैंगर क्याले जन हितरी जारी संदेश
2: सिद्धार्थ बैंक संबंध सदैव भरिलाई
3: के तपाईलाई कुनै पनि रगत परीक्षणको लागि पोखरा काठमाडौँ जानुपर्ने बाध्यता छ
4: के तपाई गुणस्तरीय प्रयोगशालाको खोजीमा हुनुहुन्छ
3: यदि त्यसो हो भने अब चिन्ता नलिनुहोस्
4: किनभने बीर अस्पताल काठमाडौँमा पूर्व कार्यरत मेडिकल टेक्नोलोजिस्टद्वारा सुन्दर नगरी कुस्माको बडगाउँमा खोलियो
3: सिटी डायग्नोस्टिक सेन्टर सिडिसी
4: हाम्रा सेवाहरू
3: होल बडी चेकअप
4: थाइराइड परीक्षण भिटामिन डी चेक जाँच
3: मधुमेहको सम्पूर्ण चेक जाँच याज बीए1सी जाँच लिपिड प्रोफाइल लिभर फंक्शन टेस्ट एलएफटी
4: युरिक एसिड बाथ टाइफाइड परीक्षण
3: ग्यास्ट्रिकको परीक्षण
4: मोटोपनको परीक्षण
3: गर्भ परीक्षण निसन्तान परीक्षण एवं पाठीघरको क्यान्सरको परीक्षण
4: रगत वृय एवं दिशा पिसाब परीक्षण
3: पुनश्च यहाँ हरेक दिन अत्याधुनिक प्रविधिको मेसिनद्वारा धौलगिरीमै पहिलो पटक थाइराइड तथा भिटामिन डी को चेक जाँच मात्र एक घण्टामा गरिन्छ
4: सम्पर्क स्थान
3: सिटी डायग्नोस्टिक सेन्टर बडगाउँ कुस्मा पर्वत बागलुङ मेडिकल हल रहेको नयाँ भवन सँगै
4: सम्पर्क फोन नम्बर 0674202727 0674202727 मोबाइल नम्बर 98511898918
3: सिटी डायग्नोस्टिक सेन्टर बडगाउँ कुस्मा पर्वत
5: समानता र महिला अधिकारको लागि बुलन्दित आवाज रेडियो दिदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ज

0: बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लेने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले जियौ
1: रेडियो दीदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ट्ज।

0: को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियों
1: निकट मा दीदी बहिनी निकट मा दीदी बहिनी यो रेडियो दीदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ट्ज़।

0: रेडियो रेडियो दीदी बहनी को समय सूचक हो।
1: अहिले अपराह्नको ठीक 3 बज्यो।

क्लासिक टेक को वाईफाई 6 राउटर नाम एक काम अनेक शक्तिशाली 4 एंटीना मा वाइड कवरेज 5G स्ट्रेंथ लो लेटेंसी र फास्ट स्पीड सबै अस्त्र को शक्ति बोकेको 200 Mbps को इंटरनेट अब 3 महीना का लागि मात्र 3300 रुपैया मा साथमा आईपीटीवी मात्र 250 प्रति महीना बुकिंग को लागि 9801004477 शर्तहरू लागू हुनेछन् क्लासिक टेक छोयो कि चल्यो

0: रेडियो रेडियो दीदी बहिनी को समय सूचक हो।
1: अहिले बिहानको ठीक 5 बज्यो।